हारून लांत्रा दसम से तीसरा त्रेसी दे दस देखदा को श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अवरणीय गायक हो गए सतुटुमत नारतन में जनता और लंगावन गायन शैली निशा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवीकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वन गीत होगे नामे अमरणीय कला होगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सृजु संबंधक अतिकल विलासिता की प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेडकरमिंग श्रीलंका बाइला संगीते वगेम अनिकुत गीत जात्यंत्र वेदिका वलट गिनगिय कलाकार अरुण लंत्रागे गीत अदत उत्सव वल विवाह वल सह सतुट अवस्था वल अनिवार्य अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीवित रसे मतकरण अमरणीय अंडा

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुम नर्तनमय वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पस्तुना इदास नाम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्वगत उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतकरण अमरणीय हांडा

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्दनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्या असु दशके बायला संगीत नवरसना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मल मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैल्य सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासिताव किं पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्था वलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादिने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सातुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रवण अमरणीय हंडाक

प्रिय सूर्य सेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुवदन संवेदी हंडत सरल गीत रसयत निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीवमान पवतिन हत्या वसु दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासितावकिंग प्रीतिपूर्ण निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओह श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाहनक तबुआ प्रिया सूर्य सेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ